0: दोलखा जिला गौरीशंकर गांव पालिका ओडा नंबर 8 खारे कसेरी स्थित विश्वरूप धाम में पवित्र श्रावण महीना भर भव्य धार्मिक मेला तथा विशेष पूजा आराधना को आयोजना गरिएको हुँदा पारिवारिक सुख शांति समृद्धि र आध्यात्मिक कल्याण को कामना गर्दै संपूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई विश्वरूप धाम में उपस्थित भई पुण्य लाभ लिनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ।
1: इस धाम में भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश नाग नागिनी तथा 33 कोटी देवी देवता प्रति श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना गरिने छ।
0: श्रावण महीना को प्रत्येक सोमवार विशेष रुद्राभिषेक भजन कीर्तन दीप प्रज्वलन तथा प्रसाद वितरण को व्यवस्था गरिने छ।
1: विश्वरूप धाम परिवार गौरीशंकर गांवपालिका ओड नंबर 8 खारे कसेरी।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

से जाम है, सबकी जुबां पे किस्से थे पर सब किस्से नाकाम थे। यहाँ करके इश्क दुनिया में कब चैन किसी ने पाया है, ये पहला जहर है दुनिया का जिसे पीकर भी आराम है।

रोज नींद की गोलियां लेने की वजह से इनका ब्रेन पैरालाइज हो गया है। ये सुन तो सकती हैं, लेकिन बोल नहीं सकती। आप रमेश को जल्द से जल्द बुला लीजिए। परमीश, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। यू हैव टू बी विद हर। इसे तुम्हारी जरूरत है।

पत्ता को चिन्ह हेरे भय हिंदा भरंग माखिया की जय। तिम्रो लड़के जवान।

मन परे के कंसु हाथ में समय लानु तू छोड़ दीना मुर्ती न लौबा को खुश स्वर टाल छोड़ दीना मजंगा।

विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति पर्यटन विकास कला जन पक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।